नमः। ओम श्री साई साधु मानस परिशोधकाय नमः। ओम श्री साई साधकानुग्रह वटवृक्ष प्रतिष्ठापकाय नमः। ओम श्री साई सकल संशय हराय

ॐ श्री साई सर्वभय निवारिणे नमः। ॐ श्री साई आपस्तंभ सूत्राय नमः।